0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै लई, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग, पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेडे मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेडे हुण आपां नूं मानदे ही नहीं, गुरु घर नूं नहीं मानदे ऐवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु करदा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करदे, कई ब्राह्मण गुरु घर दे प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पौलिए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, उह तां इक गुरसिख है। भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं

कदे भी इन्हों की पूजा नहीं करनी कुछ कितने ये समझाने का महाराज ने कहा कि जेड़े बंदे तंबाकू का सेवन करते ने फिर लोगों नूं उपदेश करते ने कई प्रकार का कहिंदे वो भी माड़ा है उन्होंने भी सारे पाप लगते ने जेड़े बंदे उन्होंने उपदेश सुनते ने उन्होंने भी पाप लगते ने क्यों जेड़ा उपदेश करने वाला बंदा हुंदा है वो बिल्कुल एन अच्छा साफ सुथरा स्वच्छ जीवन वाला होवे तां तां ठीक है जे उपदेश करने वाला बंदा खुदे सब कुछ खाई पी जाता है फिर ओदियां गल्लां तो थोड़ा थोड़ा प्रतीत होण लग जांदा आपां नूं ते ओह गल्लां गल्लां च कह भी दिंदा है कि कोई गल नहीं आ भी खा लो एदा वैसे कोई खास डर नहीं फलानी चीज का डर नहीं माड़ी मोटी पी भी सकते हैं एदा भी कोई डर नहीं उस संगत नूं भी नाल खराब करता है यह कई थावां ते होया भी है तो इस करके पुराने समय विच भी महाराज ने यही गल दर्शाई कि जिहड़े उपदेश करता लोग ने खास करके तो वह उपदेश करने वाले जिहड़े ने उन्हां नूं यह ध्यान देना चाहिए कि वह माड़ी चीज की वरतों ना करन क्योंकि

0: सुपते निसमै सतगुर मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साहिब संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज चल रहे लड़ी व्यार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लैके मत्था टेकिया है, सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी

0: उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह ने वचन किया इस तरीके दे नाल कि जिहड़े अपने भाई गुणवान बंदे ने कवीशर ने नाना प्रकार के जिहड़े पंडित लोग ने विद्वानी करते ने कथा करन वाले ने अज इन सारयां नूं बुला के लियाओ इन्हां कोलों अज कुछ प्रश्न पुछने ने
1: सभियन को हकार लियाओ जय जय दीता सिदाओ
0: इन्हां सारयां नूं लै के आओ जिथे जिथे भी डेरे ने इन्हां दे टिकाणे घर बार श्री आनंदपुर साहब दे विच हरेक नूं बुला के लियाओ अज
1: सुन कै सब तत्काल बुलाए
0: सुन के उस वक्त ही सेवादार चले गए थावां थावां ते सारयां नूं बुला लिया
1: तिनको देह नाम बताए
0: कवि जी कहिंदे कुशक दे नाम जिहड़े मैनूं पता है उन्ने क मैं दस रहा हां
1: केशो दास पुत्र कुवरेश
0: सो ये केशो दास दा पुत्र कुवरेश आया है
1: द्रोण पर्व जिल कीन अशेच
0: सो जिने महाभारत दे विच्चों द्रोण पर्व सारा जिहड़ा पर्व है वो भाषा दे विच टीका कीता है
1: गुणिया सुखिया बल्लभ आयो
0: भाई गुणिया भाई सुखिया भाई बल्लभ ये भी तिने आए हैं
1: ध्यान सिंह दूरदर्शन पायो
0: भाई ध्यान सिंह जी भी चल के आए ने इन्होंने भी गुरां दे दर्शन पाए
1: इत्यादक पहुंचे कुछ और बंदत भे सोडी सिर मोर
0: इत्यादक कुछ होर भी आए ने मुखिया दे नाम लै ले ने जां जिन्ने क पता लगे सोडियां दे श्रोमणी सतगुरु महाराज जी नूं इन्हां ने आके मत्था टेकिया
1: सादर बैठे सभा मझारे
0: सहत आदर दे आके सभा दे विच बैठे हन
1: सप्रत श्री प्रभु गिरा उचारे
0: जिन्ने जने आके बैठे सन सियाणे विद्वान पंडित गुणी जन उन्हां प्रति गुरां ने इस तरह वचन कीता है।

0: जे बहुता ज्यादा करना हो ना किसी नाल चर्चा आदि कहते दिमाग नूं वधाउणा होवे तां 24वीं पौड़ी पढ़ लो।
1: पंचवीसवीं आदरी सबको मोहन रेत
0: अरे भी ते पंज पच्चीवीं पौड़ी जिहड़ी असीं बख्शिश कीती है अपने आदर लई ते सारे जे ते मोहित हो जाण जी जंत सब भए दयाला। यह गुरबाणी अंदर कई चीजा आने जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अथवा बादशाह साहब सब वस कर दीने मतलब गुरु घर चीजा है नहीं गिया सारा कुछ बाणी अंदर हैगा पर अपने कोल तो फिर उन्नी की सोझी जिनी आपां नूं होनी है जे असी यह चीज छड़ जाई ना दसणो तो अगला यह समझदा कई बार बाहरले लोग भी कहने इन्हां कोल फलानी चीज नहीं गुरु घर साडे कोल सारा कुछ ही है असी वरतीए ना वरतीए पर अपने कोल कोई कमी नहीं इन्ने खजाने भरपूर पए ने। महाराज कहने जे मोहत की क्रिया भी करनी होवे तां भी इस पौड़ी का पाठ करे। पच्चीवी
1: छब्बी छल मैं बल धरे सप्तविश का जाप
0: कहने फिर इस करके दूसरियां दे छल तो बचण लई छब्बीवीं का पाठ सताईवीं का जाप जिहड़ा बल धारण वास्ते करे।
1: अठवीस कै भै दूर को होए बजर सम पाप
0: भै दूर करन वास्ते बजर पाप हो जान जेड़े बंदे तो अठाविंस पाप अठाईवीं पौड़ी जेड़ी है इत्थे सताईवीं मंगनी है क्योंकि उन्होंने पहला एक पौड़ी उपरों लै ली दूसरी इस करके सताईवीं पौड़ी सो दर तेरा कहा सो करके हा ये बजर पापा नूं दूर करन वास्ते डर नूं दूर करन वास्ते कहने पढ़ी जावे।
1: विख पीवै बिखिया कटे उन्ती से का झाड़
0: कोई बंदा सप लड़ जांदा जां जहर पी लवे इत्यादिक जहर दी क्रिया नूं कट्टण वास्ते भी कहंदे असीं बख्शिश कीती होई है ते जेड़ी पौड़ी 29वीं है इहदा जाप करे।
1: दूध वधावै वजन मैं तीस पौड़ियां गाड़
0: कहंदे हुण जिहड़ा अजकल लोग दुध वधाउंदे आ होर इतना मिलावट करते कई कर्म करते ने बाणी नाल भी दुध वधदा है बाणी नाल भी रिद्धियां सिद्धियां वधदियां ने। महाराज कहिंदे 30वीं पौड़ी का जाप करे घर विच दुध की कमी नहीं रहिंदी ओही भाव के सारा जपजी साहब दे पाठ करे सारियां मुरादां पूरियां गऊ भैंस मंगो ला वेरी भगत धन्ना जी परमात्मा नूं कहिंदे एक गऊ दे दिओ एक लवेरी मझ इह ना होवे कोई दुध ही ना दिंदे हो मैं की करनी है इस करके नाल लावेरी लिख दिता लावेरी हुंदी है सोई हुई गऊ ते सोई हुई मझ ता महाराज कहने जे दुध दी लोड़ है दुध वधाउणा है गऊ मझ दुध नहीं दिंदी है गृहस्थी बंदे हो तुसी कम कार करने ने फिर इन्हां ना बामणा कोल भजे जाओ उत्थे किते पणतां कोल धागे करवाउंदे साडी गऊ नूं बंधना कहने उरे ही है सारा कुछ जपजी साहब दा पाठ करिया करो बस सरोवर दा जल सका दिओ बाणी ते यकीन करो जे देता तां भी चंगा ना देता तां भी चंगा छड्ड के तुहानूं जाणा नहीं होर नहीं किते जाणा क्यों महाराज कहिंदे बाणी ते जे भरोसा करोगे तो सारा कुछ सब कुछ धर्म है बाहर ना ही बाहर टोला सो भरम भुलाहे
1: एकी छेको दोकी भागे त्रै तेते इक ताप
0: कहिंदे इस तरीके दे नाल जिहड़ा है ना सारे तरीके नाल जिहड़ा वधदा दुध उह तां दस दिता कहिंदे 31वीं पौड़ी दे जाप तों छेके कदे लहण कदे चढ़न वाला ताप यह जिहड़ा है दूर हो जाता 32वीं पौड़ी दे भागे त्रै कहिंदे तेईआ ताप भज जाता अरे तेईआ दी साखी भी इस विच कार्ज करती है क्योंकि महाराज ने कहा जिथे भी साखी पढ़ोंगे भाई लालो वाली उत्थों ताप जाएगा यह पहला तो हौली हौली साहब ने छड़ दिती सी अरे कार्ज करती साखी पढ़न दे नाल पांच सत्त वारी सुनाउण नाल बुखार जांदा है इत्थे होर जाण दी लोड़ नहीं है होर थां दे उत्ते जाके किते होर कुछ सुनना जां बाणी सुनाई जाओ पर महाराज ने लावेरी लिख दिता लावेरी हुंदी है सोई हुई गऊ ते सोई हुई मझ ता महाराज कहने जे दुध दी लोड़ है दुध वधाउणा है गऊ मझ दुध नहीं दिंदी है गृहस्थी बंदे हो तुसी कम कार करने ने फिर इन्हां ना बामणा कोल भजे जाओ उत्थे किते पणतां कोल धागे करवाउंदे साडी गऊ नूं बंधना कहने उरे ही है सारा कुछ जपजी साहब दा पाठ करिया करो बस सरोवर दा जल सका दिओ बाणी ते यकीन करो जे देता तां भी चंगा ना देता तां भी चंगा छड्ड के तुहानूं जाणा नहीं होर नहीं किते जाणा क्यों महाराज कहिंदे बाणी ते जे भरोसा करोगे तो सारा कुछ सब कुछ धर्म है बाहर ना ही बाहर टोला सो भरम भुलाहे।

0: लोग जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हां, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं। उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके, भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घर चाहे चलता करता कोई। सो इस करके उत्थे जाके जदों यह कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लेंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन का टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकते ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर इह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कट्टण वास्ते दसम दी बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ दी बाणी जिन्ने भी जाप साहब दे पाठ हो जाण, चौबी साहब दे वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तां महाराज ने यह चौबी साहब दे पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारी है। जिहड़े लोग किंतु करदे ने चौबी साहब ते, समा आ जाएगा जब तुसी खुद ही कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि इहदी जरूरत पै जानी है। जाप साहब की बाणी फिर इसे प्रकार आईयों सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की। जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौबी साहब, आनंद साहब का पाठ, सो इहदे विच भी बहुत विचार वालियां चीजां ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 84 लाख जून दे मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है। जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे हां, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे हां। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी।

याद रखा करो, आपका स्मरण गर्भ ना बस है, आपका स्मरण दूध जामा घर चो भजा चाहते हो बाबा को गलत बीता वाले को कदी कबर से तुरे करता जीव कदी कितने तुरे करता सिर्फ चौदह मेरे घरों कले कलेष नट जाए महाराज मेरा काम चल पवे तो महाराज पातशाह की कह रहे सिमरो सिमर सिमर सतपावत अगे पढ़ो की लिखे क्या इतो भी मिट जू फिर कबर से की लैन जाते ना झूठे पेंदे हो गुरु तो नाले धागे तवीता आले को जाके गुरु तो झूठे पेंदे गुरु तो झूठे ना पाओ एक बचन कह के समाप्ति करूंगा तन गुरु ग्रंथ साहब की कहते रे एक बार नोट करो रेजी नलज रेजी नलज कहते विशाल वेलो कि मिठा बोलता सतगुरु पर आ बचन इतने आके क्या रेजी नलज लाज तो हे नाही ये नलज विशर्म जीव तो विशर्म नहीं आती आखिर की गलती होगी ए गुरु का सिख हो गया कबर के मथे टेकन दे हर ताज करत हर ताज ताज मैंने छड़ के इनू छड़ के पत कानून ते जाई होर ना वल तुरया जाना है ते फिर दृढ़ करवाया इन्दे नाले तू कहना हमरा ठाकुर सब ते उच्चा इन्दा नहीं तू ते सब ते उच्चा तेरा ठाकुरा ते फिर उन्हां कोल की लैन जाना है जे जिउंदा तेरा ठाकुरा ते मरिया कोल की लैन जाना है कोई सतनाम तेरी ये गल ते गुरबाणी दा वचन के जीवते को जीवता मिले बोलो जी इतना लिखा कि जीवते को मुए को मरे नु मरिया मिलता है जीवते नु जीवदा मिलता है तुरदे नु तुरदा मिलता है उड़दे नु उड़दा मिलता है ते जेड़े फिर मरिया दी कबरां दे उत्ते चले गए फिर वो जीवदे थोड़े ने मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहते रहे तेन शर्म आनी चाहिए जीव तू धन गुरु ग्रंथ साहब वर्गा ठाकुर छड़ के इधर उधर धागे पीली तरह के चक्कर के ना पै गुरुद्वारे आया कर गुरु द्वारे हुए सोची पाई सी बोलो गुरु।

0: सतगुरु कहते कर हर माला टिंड प्रो ध्यान दो जी जग दी रूहां एकाग्रता बख्शियो कहते आ जेडे सवास आ इन्हां नूं आ बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरू वाहिगुरू गल करो
1: वाहिगुरू
0: ते खूहां दे विच इक चीज पानी भरन नूं जेड़ी वगदी सी उहनूं कहिंदे
2: टिंड
0: माल ते जेड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनूं कहिंदे टिंडा उहनूं टिंडा कहिंदे कर हर ट इक खूह बणा आ जे सवास ने तेरे इन्हां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास नूं टिंडा बना महाराज इस माल नूं खिचे कौन एकाग्रता बख्शे इस माल नूं तेरा तू आए नूं खिचे कौन कहिंदे इस भीतर मन जोगो सरवण कीता इस भीतर बलदां दी जगह ते इहनूं खिचण नूं किहनूं जो कौन किहनूं जो मन नूं विच जोड़ो जोगो दा मतलब जोड़ दिओ जो दिओ आपां कहिंदे बलद जोड़ दित्ते इहदे इस खूह दीआं माला टिंडा खिचण लई मन नूं बलद बणाओ ते मन तां साडा सिमरन करदिआं वी दौड़दा रहिंदा है साहिब कहिंदे ने तूं मन नूं जोड़ के इहनां टिंडां नूं खिच अगे जाके कहते अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत ते भरो क्यारे बोलो ना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेडे खेती बाड़ी करते उन्होंने पता है एक छोटिया छोटिया मटा पा के खेत दे विच की पा दी दे खेती बाड़ी करते तुहानू पता पिंडां दे रहण वाले खेती बाड़ी करन वाले पता क्यारे पा दी दे साहब कहते ने अंदरों मन नू जो के आ जिहड़ी सवासां दी टिंडां दी माला इहदे राहीं मन नू जो के वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे ते मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी पुछया महाराज शरीर च कहड़े क्यारे ने आखो सतनाम श्री गज के बोलो सतनाम महाराज खेतां विच ते क्यारे हुंदे इत्थे क्यारे कहड़े कहिंदे अखां नाम जपन वाले दियां अमृत ना भर जांदियां अंदरों आणा के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पैंदा आखो सतनाम श्री पढ़ते नहीं ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदियां दृष्टि चो अमृत वगन लग पैंदा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी परसन लग पैंदा है फिर आखिया महाराज होर केड़ा क्यारा भरीये महाराज कहिंदे रसना अमृत नाल भर जांदी गल करन लगदा वा ते कहिंदे फलाना बंदा भजन करदा मुंह चो अमृत डोलदा नाम जपण वाले दी रसना कदी फिका नहीं बोलदी नाम जपण वाले दी रसना सदा मिठा बोलदी अमृत वर्गा साहिब कहिंदे ने मन नूं जो इह सवासां दी माला बना मगर इह जे बरतना होया जे मन नूं तूं ना विच जोता सिमरन विच मन नूं ना जोड़िया ते टिंडा दी माला चलनी नहीं थल्ल्यों अमृत आउणा नहीं ओह इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कुछ नहीं मन नूं विच जोड़ना जरूरी है अमृत सिंचो भरो क्यारे ते अगे लिखे तो माली के ओहो तो गज के बोलो ना तो

बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कैरव दास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, कैरव दास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुखो गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दी बख्शिश दा सदका आप जी सरबत माई पाई, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे दर्शन करन लई आप अपने घर तो आए हो, वडभागे हो। सतगुरु ने एक था बाणी दे विच ऐसा दर्ज किया है, बाह पकड़ जिस मार्ग पावो, ओ जीव सतगुरु गरीब नवाज तेरी पावन चरण शरण विच पनाह विच आउंदा है। जिन्हों तो जीवन दे नरबा विचों गुजरदिया होया बाहों फड़ के आखे चल गुरुद्वारे चलीए, एवें नहीं। सतगुरु दी पावन गुरबाणी विच यह दर्ज आ कि जिहदी बाह फड़ के सतगुरु गुरुद्वारे लियावे वह गुरुद्वारे आउंदा है। अज दी इस घड़ी दे विच आप जी अपने आप नूं वडभागे जाणो कि तुहाडे पावन शरीर नूं धन गुरु नानक पातशाह दे दीन दुनिया दे मुबारक हाथ लगे, तुहानूं बाह फड़ के सतगुरु ने अपनी शरण विच लियांदा है। इथों हुण जिहड़ियां घड़ियां सतगुरु दी शरण विच आप जी ने गुजारनियां ने, सतगुरु कृपा करे ए 20 मिंट दा समां साडे जीवन दे विच ओ गल समझा जावे जिहड़ी अज दे पावन उपदेश विच गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह दीन दुनिया दे मालक इस महीने राही आपां नूं कहणी चाहुंदे ने, उपदेश देना चाहुंदे ने। हे जीव आत्मा, अषाढ़ दे महीने विच तू की कमाई करनी, अषाढ़ दा महीना किन्ना नूं तपश वाला लगदा है, ते किहड़ियां जीव आत्मा नूं अषाढ़ दा महीना सोहणा लगदा है। ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਗਾਈਏ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆਣ ਕੇ

तरला पाओ तरला, जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो।

कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी नदाना तुमरी महिमा वर्णन सको।

एक मिनट लिए शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सा, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है, धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नू जगत विच जगया जिदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असी अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आ, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आ, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आ, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आ, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आ। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

0: गुरु
1: गुरु
0: गुरु
1: परिवार हे गुरु। आओ जुड़िए सतगुरु दे चरणा नाल। मेरा साहब कृपा करे ए जिहड़ियां घड़ियां आपां नूं नसीब होईयां ने चिम चिम अमृत वरसदा। एक थां ते मेरे सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने ऐसा वरिया ऐसा वरिया ऊनम ऊनम आया। बोलो ऊनम ऊनम। ऊनम दा मतलब हुंदा है नीवा नीवा। जदों बदल सावण दे भादरों दे महीने विच झड़ियां लगदियां ने ते गुरमुख प्यारे बदल ए लगदा जी कोठियां दे नाल लग गया। आखो सतनाम श्री। इतना हुण आपां नूं नाम जपदियां नूं लगदा सी कि गुरु साडे कोल आ गया। ऊनम ऊनम आया। बोलो ऊनम ऊनम। नीवा नीवा बदल बन के गुरु कोल आ गया ते वरसे लाए झड़ी। वरसे लाए झड़ी लगी। वेखी ना कई बार सत सत दिन अठ अठ दिन नौ नौ दिन फिर बदल हटन दा नाम ही नहीं लैंदा। पंद्रह पंद्रह दिन पानिया वटा बन्ने तोड़ के लै जांदा है। झड़ियां ला के वरस पैंदा है। इसे तरह मेरा सतगुरु मिलकर कृपा करे ए जिहड़े तेरह चौदह दिन अपने बाकी ने झड़ी ला के सतगुरु वर जावे। वाह

0: अपने अंदर झाती मारो, धन गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी अनुसार जीवन ढालो, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो। ये हर हर कथा निराली कथा है, प्यारी कथा है, जिधर गुरु तोरदा है उधर चलो। सो सिख सका बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, हुक्म विच आवे गुरु दे ते, अपन भाणे जो चले भाई, ओ विछड़ चोटा खाए, विछड़ के चोटा। आ सारा संसार अज क्यों दुखी, सारे संसार दे दुखां दा कारण कही है इना पंजवें बापू दा वचन नहीं मनिया। सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना, इना पंजवें बापू दा वचन नहीं सुनिया। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, बेमुख होए राम ते लगन जन्म वजोग। इना पंजवें बापू दा वचन नहीं सुनिया, इना साहिब गुरु नानक पातशाह दा वचन नहीं सुनिया। जै तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। मेरे साहब जी कहिंदे ने उन्हां दी हालत इस तरह दी हो जांदी जी, कोई कोड़े तरसदे ने, जिन्हां नूं कुष्ठ रोग लग गया है, जिन्हां दे लक विच कैंसर दे फोड़े हो गए ने, जिन्हां नूं कीड़े पै गए ने, किस तरह ते रात दिन हाए हाए करदे ने। हर हालत भावे वह सुंदर कपड़िया बैठा है, भावे 500 गज के मकान बैठा है, भावे वड्डिया गड्डा बैठा है, जेड़ा परमेश्वर नूं भुल गया उहदे मूहों वाहेगुरु नहीं निकलता, उहदे मूहों हाए हाए निकलता है। क्योंकि पापी कर्म कमावदे करदे इत्थे दे तुहाडे रवाज जिहा ही बनिया। आखो सतनाम श्री की बनिया, जिन्हों मिलदे हो की कहिंदे हो, कमाल दी गल आ। हाए उदो मूहों निकलदी आ जदों बड़ी तंगी होवे, पीड़ होवे। ते मेरी जा चेतना सारे अमरीका वाले नूं पीड़ी होई जांदी एक दूसरे नूं। आ थोड़े दिन होए उत्थे किसे झील दे उत्ते सैर करन दे नाल गुरमुख प्यारे सी बच्चे, ते उहने अगवा कहा हाए, ते मेरे नाल दा वी कहिंदा हाए, ते मैं कहा गिमका तूं ना किहनूं हाए, ते कहिंदा मैं की कहिंदा। मैं कहा जदों उह कहिंदी सी अगो च बच्ची तुरी आउंदी अंग्रेज, उहने जदों आख्या हाए ते मैं कहा तूं अगो कहिंदा वाहेगुरु, उहदे कन्नी पै जांदा ना गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से फिर पै जांदा ना कन्न च वाहेगुरु गुरु परमेश्वर का नाम। जे उन्हें आख्या सी हाए ते तू क्यों हाए आख्या, तू अगो कहना वाहेगुरु, ते जां कल्ला कह देना वाहे वाहे भी, वाहे भी वाहे वाहे वाहे भी शब्द बाणी दे विच आया। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी आपां नूं बख्शे परे बचना विच कहिंदे ने, देख फरीदा जेथिया दाड़ी होई पूर, अगो नेड़ा आया पिछा रहा दूर। हां जी,
1: देख फरीदा जेथिया सक्कर होई विस,
0: वेख फरीदा आ की बन गया। कल तक जेडे मिठे भोग लगते सी, कल तक जेडिया चीजा चंगिया लगदिया सी, अज यहर वर्गिया क्यों लगदिया ने। आखो सतनाम श्री। जवानी वेले ते बड़ा टीवी ला ला के कहिंदा सी मैनू चंगा लगदा, हुण बुढ़ा कहिंदा मेरे कन्ना च आवाज वजदी लाओ ना। जवानी वेले ते हर चीज बड़िया भर भर के ढिड खांदा सी, हुण कहिंदा ना मेरे कोल रोटी खांदी जांदी, ना हुण मिठा खादा जांदा है, ना कोई होर चीजा। जिन्ने दुनिया दे भोग सी कल शक्कर वांग मिठे लगते सी, मगर बाबा फरीद कहिंदा वेख की हो गया, शक्कर होई विस, शक्कर होई वो जिहड़ी शक्कर सी ना मिठी, वह यहर वर्गी होई विस वर्गी बन गई। हुण कहिंदा मेरे वल किसे नूं वेखण नूं दिल नहीं करदा, मेरा किसे वल वेखण नूं दिल लगदा, किसे दी गल सुणन नूं दिल नहीं करदा। उदों एवें कार चुक के तुर पैंदा सी, चलो शहर वेख के आवां, हुण नहीं जांदा। इह जिहड़ी हुण हालत हो गई आ, जिहड़े मिठे भोग सी उह यहर वर्गे बन गए, मगर इह अपने मन दी मैं अवस्था किन्नू दसां, सुणो जी।
1: साईं बाजों अपने वेदन कहिए किस,
0: उस साईं उस वाहिगुरु परमेश्वर तो बिना ए हुण हालत मैं किन्नू दसा। बाबा फरीद जी कहिंदे ने वो जिहड़ा सब कुछ चंगा लगदा सी ना, चिलमल बसियार दुनिया फानी, इन्हां लत्तां दे नाल किते सैरां करदा, कुछ खांदा कुछ पींदा, वह सब कुछ हुण यहर वर्गा पासण लग पिया। मगर ए जिहड़ी तब्दीली मेरे जीवन च बजुर्ग हुण आके आई आ, हुण कुछ भी चंगा नहीं लगदा, ए मैं वेदन हुण किन्नू दसा। साईं बाजो अपने, बोलो साईं हुण वेदन कहिए किन्नू आखा, ए किन्नू दसा, ए कि मेरी ये हालत होगी, कोई सुनदा है मेरी? बुढ़िया दी ते कोई भी नहीं सुनदा, पानी मंगदे नवा किन्नियां चुप कर रौला ना पा। तिया पुत परिवार दे सारे जी जवाब दे जांदे ने, कहत कबीर कोई नहीं तेरा तब तेरी ओक, कोई पानी हो ना पावे, पढ़ते हो ना, तब तेरी ओक।

0: आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गज के आख्या करो तुहाडे परिवार दा भला, तुहाडे जीवन दा भला, पंथ दा भला। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तरला है ऐरकां दे प्रचार दे विच ते बहुता तरला पाउण दी हुण जरूरत है, क्योंकि नेहरियां बहुतियां आ गईयां। एक पंछी आ सिख पंथ जिहड़ा है ना, एक पंछी लिखिया गुरबाणी दे विच, सरवर पंखी हेकड़ो। बोलो सरवर पंखी। सरवर दा पता है सरोवर, कहिंदे सरोवर दे कंडे उत्ते, इस दुनिया दे सरोवर दे कंडे उत्ते सिख पंथ रूपी एक पंछी है आण के बैठा, शुद्ध मोती चुनने वाला। सरवर पंखी हेकड़ो ते फाई वाल पचास, इहनू फाइयां लैके जिहड़े फण वाले ने ओह मेरे सतगुरु ने लिखिया वा, पंजाह ने लाख अहेरी एक जियो। इथे आख्या लखां शिकारी ने मगर एक सिखिया, केता बंचू काल किन्ना क चिर बचूंगा इन्हां दे कोलों। जे तुसी सुचेत ना होए, जे अपनी कौम ना जागी, जे गुरु दे सिखो तुसी एक एक बच्ची बच्चे ने अपना फर्ज ना पछाणिया, ते मैं गुरु दी हजूरी च कह रहा इनू खतरा ते कोई नहीं, इन्हें मिटना ते संसार विचों है नहीं, मगर नुकसान बहुत हो जूगा। आउण वालियां सदियां तक घाटा पूरा नहीं होगा, अंधेरियां आ गईयां जे बहुतियां, ते सुचेत हो जाओ, उठो अमृत वेले, इन्हां तों बचोगे कि तरह। हुण हर बंदा पुछदा जी बचा की है, जे पंथ नूं खतरे चार चपेरे पै गए ते इहदा बचा की है। इक्को ही बचा वा कि तुसीं सिमरन अभ्यासी बन जाओ। तत्ती वाओ ना लगे ही कदों, जदों पार ब्रह्म शरण आई, इहदी शरण विच आ जाओ। सिखो साडे दुश्मन वी तां बणे ने, असीं तां अज तक नुकसान विच गए आ, असीं वी गुरु नानक दा पल्ला छड दित्ता। ते आपां जदों मरदाने ने वेख्या महाराज इनियां अनेरियां आ रही ने उड़ा के लै जाणगियां, वेखो लाल अनेरी आउंदी मूंह अड्डी, पता नहीं किन्ने राक्षस विच तुरे आउंदे ने। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह कहण लगे मरदानिया इह अनेरी तेरा कुछ नहीं वगाड़ूगी। आख्या मारक इन्नी अग दी अनेरी आ रही उड़ा के लै जू, मरदानिया कुछ नहीं कहूगी तेरे मुंह चो जे ना रुकिया सतनाम श्री। जे वाहगुरु ना रुकिया ते अनेरियां तेन कुछ नहीं कहणगी। मेरी हाथ जोड़ के पंथ नूं बेनती, तुसी पंथ रूप विच बैठे हो ते मैं इस गुरु नानक दे घर दा टुकड़ खाण वाला कुत्ता तुहानूं पहलों सचेत कर रहा। जे हालात तो बचना है ते नितनेमी बन जाओ। जे हालात तो आउण वालियां ने, कई बंदे सोचदे कई नहीं सोचदे, कई कहिंदे खाना पीना हसना सौना बस इन्ना कुछ ही है, मगर थोड़ा जिहा सचेत हो जाओ। कोई धरती की विपता नहीं जे जिहड़ी इस वेले पंथ दे दुआले नहीं होई। मेरी हाथ जोड़ के बेनती, जे सारियां मुसीबतां तो बचना वा, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोए ना, दे लागू होए दुश्मना साक भी भज खले। इथो तक होर मुश्किल की बन सकती है कि अमेरिका की सब तो वड्डी एजेंसी जिन्हों CIA कहिंदे हो, उन्हें भी लिख दिता है कि सब तो दुनिया की नामराद बीमारी जिहड़ी एड्स है ना, यह सिखा तो फैली। यह छोटा जिहा दोष नहीं जिहड़ा तुहाडे ते लगा है, यह दुनिया च बदनाम करनू केवल इको ही दोष बड़ा है। तुहानू नफरत करनगे हवाई अड्डे खलोते लोकी, तुहाडे कोल बह के राजी नहीं होणगे लोकी, जो उन्होंने अखबार में लिख दिता है कि दुनिया की सब तो भयानक बीमारी जिहड़ी एड्स आ जिहदा कोई इलाज ही नहीं, यह सिखा तो फैली। गुरमुखो इहदे तों बचना कितना है, सच्चे मार्ग चलदिआं उस्तत करे, सच्चे मार्ग उत्ते आ जाओ। दुनिया के अखां विच घट्टा पा दूगा मेरा गुरु नानक, सारे तुहानू सज्जण समझण लग पैणगे, सानू गुरमुख समझ लग पे, मगर साडे चेहरे तो हुण गुरमुखताई लभदी नहीं, साडे चेहरे तो नितनेम लभदा नहीं, साडे चेहरे तो नजर नहीं आउंदा सतनाम श्री वाहिगुरु दा सिमरन। मेरी हाथ जोड़ के आप जी नूं बेनती है, कौमां जीवन दे विच ओही सफल हुंदियां ने जिहड़ियां अपने मुढ नाल जुड़ियां रहिंदियां ने। मेरा सतगुरु कृपा करे, रहमत करे, बचन तां करन नूं बहुत दिल करदा फिर सही। साहिब जी कहिंदे काली जिन्नी ना रावया, बोलो काली जिन्हां ने काले वालां विच परमेश्वर नूं नहीं पाया, धौली रावे कोए, धौली रावे। बाबा फरीद जी कहिंदे धौली दे विच ते फिर किसे ही रावया है ना, जिन्हां ने काले विच काले वालां विच जदों भज सकदा, बह सकदा, उठ सकदा, नाम जप सकदा है, जे उदों परमेश्वर दी बंदगी नहीं कीती ते धौलियां दे विच ते कदों परमेश्वर मिलण लगा है। हां जी
1: कल साई स्यों पिरहड़ी रंग नवेला होए।
0: बाबा फरीद जी सुचेत कर रहे ना, वैसे कहिंदे पिरहड़ी हुंदा प्रेम, कर साई स्यों पिरहड़ी। फरीदा उस मालक नाल प्रेम कर, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਨੋਖਾ ਤਾਜ਼ਾਪਨ ਦਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਵਿਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਈ ਨਾਲ ਬਿਰਹੜੀ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਮਹੱਲਾ

धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब धन गुरु गो धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब धन गुरु गोबिंद सिंह साहेब।

0: चरण
1: कमल तेरे तोए तोए चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा
0: चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा चरण कमल तेरे

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनु कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरों ता आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगुण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत ना पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगुण यारी कंत ना पावे बोलो अवगुण यारी सारे बोलो जरा अवगुण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगुण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा ओदे सुभा नू इहने जाणिया ही नहीं कि मेरा पति ते उहनां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारिओ मेरे सतगुरु दे चरणां विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यार वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मलाप हो जाए।

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वडियाई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया ए

नाम साचा नाम मेरा आधार, सच्चा नाम मेरा आसरा है, सच्चे परमेश्वर का नाम मेरा आसरा है, कलयुग दे विच मेरी इज्जत पत रखने वाला मेरे को इको ही गहना है, इको ही परमेश्वर की टोक है दिती हुई जड़ी सतनाम श्री वाहेगुरु। नाम वालियां दे अपने सेवक दे पर्दे ढकदा है, अपने सेवक की लाज पत रखदा है, जेड़े नाम जपदे ने ना उन्होंने मेरे साहब जी कहिंदे ने औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतप

0: Hare, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru, Vagru,
1: Vagru, Vagru.
0: इतना लिखिया गुरबाणी दे विच के मां दे पेट विच ए पुट्ठा, इतना गुरबाणी विच लिखिया है कि जिथे अग्न पखे पढ़हारे, अग दे लाटां वगदियां सी इहदे चार छपेरे जीव दे, उर्द मुख महा गुबारे, पुट्ठा मूह थले नू लत्तां तां नू, ते बड़ा अनेरा सी उथे जिथे मां दे पेट विच ते अग विच जल रहा सी विचारा, मगर उथे ए जाप रहा सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह उथे जो जपदा सी ना इतना शब्द लिखे एकाग्रता बख्शे आखो सतनाम श्री जिथे अग्न पखे पढ़हारे उर्द मुख महा गुबारे ते ध्यान देना है उथे लिखिया सास सास संभाले सोई ए सास सास उस वाहगुरु नू याद करदा सी उथे अग दे विच गुरमुख प्यारे ए चौवी घंटे वाहगुरु की याद विच जुड़िया सी ते उथे फिर अग दे विच उथे खसम छडाए लिया इनू उथे पुठे लड़के नू उथे खसम छडाए लिया बोलो हां उथे खसम फिर बोलो उथे खसम उथे पुठे लड़के नू किन्ने छडाया खसम दे वाहेगुरु ने ते जदों इथों छडा के बाहर ले आंदा इतना लिखिया है विचों गर्भे निकल आया बोलो विचों गज के आख्या करो उस फोटो नू वेख के उस तस्वीर नू वेख के उथों छडा के किसी ने गवाही दे के एदी जामनी भर के किसी ने उथों छडा के बाहर लिया विचों गर्भे निकल आया बोलो विचों
1: गर्भे निकल आया
0: ते जदों बाहर आया खसम वसार दुनी चित लाया खसम वसार
1: दुनी चित लाया
0: फिर बोलो खसम वसार
1: दुनी चित लाया
0: बस विचों बाहर आया ते ओ जिहड़ा छडाउण वाला सी ओ भुल गया दुनिया चेते आ गई मम्मी चेते आ गई चाचा चेते आ गया नानी चेते आ गई फुफी चेते आ गई हुण ए चेते ने ते माया अमर वरताया माया दा हुक्म चलन लग पिया मेरे सतगुरु कहिंदे जैसी अग्न उधर मैं तैसी बार माया जितना अग्न अग दी अंदर च तरले पाउंदा सा है मैं सड़ जूंगा आ बार माया दी अग विच वी बंदिया इत्थे वी तरले पा उस वाहिगुरु नूं इथे भी तेन जे अंदरों की अग विच उन्हें छडाया वा ना ते इस अग दे विचों भी तेरी सहायता उन्हें ही करनी है इथे क्यों भुल गया है ए अग विच सड़ जाएगा जे अंदर दी विचों बच के आ गया वा ते अरबा संखा नीला रूहां बाहर की अग विच ममता की अग विच मोह की अग विच काम की अग विच सड़ गई जे इस अग तो भी बचना ही ते हुण भी जपया कर सतनाम श्री वाहिगुरु हुण भी वाहिगुरु का सिमरन करिया कर हुण भी बंदगी करिया कर हुण भी आवाजां मारिया कर उस मालक नूं हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तैं तुम राखण हारे इत्थे भी हुण पावक सागर था लहर मैं तारो

हाथ जोड़ो सतगुरु दे चरणा च तरला पाओ। सतगुरु ए जलदे बलदे संसार चो अपना ओट आसरा दे के बचाला। आओ हुण लड़ीवार जो कथा आरंभ आ। सतगुरु दी पावन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे मुबारक बचन आप जी सरवण करने। पहलो आप जी नूं पुछ लवां घरां दे विच की बोलना है जी, सारे दस्यो की बोलना है। किते इस तरह ना होवे कि जिस तरह तोतियां दी डार नूं किसे ने एक तोता किसे रख लिया ते उन्हूं महारनी पका ली भी तोतिया पोस्त नहीं खाना। ध्यान दियो, तोतिया पोस्त नहीं खाना। एक दिन वो तोतियां दी डार विच उड के रल गया, सारिया नूं महारनी पकाती, तोतिया पोस्त नहीं खाना। ते सारे ही तोते उड़दे उड़दे जाके एक पोस्त दे खेत विच बह गए ते सारिया ने चुंझा भरिया, पोस्त खाई जांदे ने ते जेदी चुंझ खाली होई जांदी ओ आखी जांदा वा तोतिया पोस्त ना खाई मर्जी दा है। नाले खाई जांदे ने गुरमुखो, नाले अंग्रेजी ना किते जाणे ना बोली जायो ते नाले आखी जायो पंजाबी बोलनी। इस तरह का नहीं, बार भुलो जिथे तुहाडा नहीं सरदा मगर अपनी औलाद दे कन्नां विच ए छैत वर्गी मिठी गुरमुखी पाओ। घर विच पंजाबी बोलो, पंजाबी लिखणी बच्चां नूं सिखाओ। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी नाल जोड़ो। आओ हुण बाबा फरीद जी दी रसना तों मुबारक वचन सरवण करिए जी।

कुदरत कवन हमारी ज्यो बलावे त्यो बोला स्वामी। कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की आत प्यारी। साध संग नानक